सेवा प्रवान करने जी कीर्तन करते हैं भुला दे माफी बख्शनी अवन सत्कार जपा सपा जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी लड़ीवार कथा रही जो पास सप

तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाने अस्थूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक तिस पंडित को सदा आदेश। चौ वर्णा विच शूद्र भी आ जाता है, चौ वर्णा विच अमीर भी आ जाता है, गरीब भी आ जाता है, ते तू ते दाखला देन तो पहला कहना है रिटर्ना लियाओ, तुहाडी ईयरली इनकम की है, फिर वेखांगे तुहाडे बच्चे नू दाखला देना है कि नहीं देना। तू तो बच्चे दे दादियां परदादियां तक जाना, भाई तुहाडे कोल इनकम दे सोर्स की ने, तुसी इत्थे पढ़ा भी सकते हो कि नहीं, क्योंकि असी तुहानू लुटना है, तुसी लटाण जोगे हैगे हो कि नहीं, पहला साबित करो फिर असी तुहानू दाखला देंगे। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे ने, तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, अवरां नू ना सखाल बिखिया। आम तौर पर तो विद्या सिख साढ़े उत्ते तो यही ट्रेंड है भी विद्या सीखण का मतलब है, असी तो बचपन तो झिड़का ही खादियां ने भी कुछ पढ़ लै नहीं तो धक्के खाएगा, कुछ पढ़ लै रोटी जोगा हो जाएगा, मैनू खिमा करना। अनपढ़ सन माता पिता आप भी अनपढ़ ही हाँ, ये साढ़े वाली विद्या किसी पढ़ाई च कोई गिनती च थोड़ा आती है। हुण उत्थे ये नहीं सी कहना चाहिए भी भुखा मरेगा पढ़ लै, उत्थे ये दसना चाहिए सी भी बेटा जे पढ़ जाएगा तो तेनू नैतिकता का पता लग जाएगा, बेटा जे तू पढ़ जाएगा तेनू सदाचारक गुणा का पता लग जाएगा, पुत्र जे तू पढ़ेगा तो पुस्तकां तेनू जीवन जाच सिखा देणगियां। असी विद्या की पढ़ाई इतों शुरुआत इतों की भी विद्या धन कमाण का एक जरिया है, जदों के वास्तव में विद्या सिर्फ धन कमाण का जरिया नहीं है, वह एक जीवन जाच है, उहदे विच नैतिकता सिखाई जानी है। और जुमे जुमे असी तो जे किते इस तरह विचार ही कर लीए भी दसो नैतिकता की परिभाषा है, सदाचारक गुण किनू कहिंदे ने, तो बड़ा टफ है भी कोई हाथ खड़ा करके कह सके भी यह पांच नैतिक गुण ने, यह दस सदाचारक गुण ने। क्यों? क्योंकि पढ़न पढ़ाण का चस नहीं। खैर गुरु कृपा करे, बिख्या दे अर्थ होंदे ने बिख, बिख मैंने जहर, यह जड़ी माया ना गुरमुखो रिजक, यह जहर भी है यह अमृत भी है, यह डिपेंड करता है इनू असी उपयोग विच किवें लियाउणा है। कोई व्यक्ति इनू अमृत समझ के भी यूज कर सकता है, कोई व्यक्ति इनू जहर भी बना सकता है। उंज ज्यादातर लोग इनू जहर रूप में लेंगे। अवरां नू ना सखाल बिखिया, बिखिया व्यापिया सगल संसार। हजूर कहिंदे विरलिया नू छड़ के ज्यादातर लोग जेड़े ने उन्हां दे उत्ते इहदा गलबा है, ते गलबा सिर्फ ये नहीं गुजरान है, साढ़े उत्ते इस तरह का मानसिक तैयारी करा दी है भी साढ़े विच जोड़न का चस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा जोड़ लवा फिर मैं वेला होके इन थान, और कदी कदी जुड़ जाती है पर जड़ी रीज होंगी है ना भी फिर मैं गार्डन च कुर्सी डालांगा, फिर मैं कहांगा मैनू चाह का कप ते अखबार इत्थे ही दे दिओ, वो जड़ी फीलिंग जी लैंदा है वो कई बार मौका ही नहीं आउंदा। बड़ा सोहना बचन भाई गुरदास ने मैनू तुहानू सानू सारियां नू समझाउण लई लिखिया है, वो कहिंदे ने जिहड़ियां शहद दीयां मक्खियां ने जदों किसे छत्ते ते शहद इकट्ठा करदियां ने ना, ते वो पहला एक हंगामी मीटिंग सद्दियां ने, उस हंगामी मीटिंग विच तमाम मक्खियां अपना अपना मतदान करदियां ने, हाँ जी अपनी अपनी वोटिंग करदियां ने, वो फिर एक राणी मक्खी चुनदियां, फिर उस राणी मक्खी की कमांड थले तमाम मक्खियां फील्ड विच जांदियां ने, तुसी पूरब जाओ पछम जाओ उत्तर जाओ।

सिमरन दुख जाम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत काश विघ्न लाग गए प्रभ कै सिमरन अण दिन जाग गए प्रभ कै सिमरन भव न बे आपै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै

आवे। जिह मार गिह जाते अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नान गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं कोट लाख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए सिंघारे, हर का नाम तदकाले उदाहरे। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ महला मल कभ न तो होवे, हर का नाम कोट पाप खोवे।

परमेश्वरै देखो जन मरण ते डरे साजन की सरणी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कै बल बल जासा।

आरे दूध भर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पयाउ पर साग सैन मुख्य पयाउ बैठ कव दैन एहु निर्गुण गुण कछु ना बूझै बक्स ले हो तव नानक सी जय जेह प्रसाद धरु पर सुख बस है सोत परात मीत बनता संग हस है जेह प्रसाद पीब शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जेह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे दयांग

पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पार विकार मिथ्या बाहले विकार बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आर जाह सार बिना कह उत सूचा

अनुगायन साध के संग सर्वथान गमनान साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कज काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग रुहत हरे साध के संग नरक पर हरे।

ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तर पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि सलोक उर तार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नाम सिकारे नानक ओह अपरस सगल निस्तारे अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साधकी टहल संत संग हित करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस कहो मंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोह ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सो जिस पर सो प्रसान्न।

आवे, कभु सा संग तिह पावे, उसे स्थान ते बहर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उसे स्थान का नहीं विनाश, मन तन नावृत एक रंग सदा बस है पार, ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आय कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना,

मानव खूपर करे आस पर पितरता का होय बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन में होय जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राज तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जा का मेटै अभिमान सो जन नानक दरगने प्रभुवान कोट कर्म करे हौ धारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं ध्रवे हर धर गए कहो कैसे गवे आप

थया संत का दुखी बिगड़ उप हो जाय संत के दुखी को दरगह मिलाय सजाय संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय।

आप पात राखे ताकि गत मेद को न राखे प्रभु के सेवक कौ कोणा पहुते प्रभु के सेवक होते होते जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस प्रगटायो

बृहस्पति संत जना मिल करहो विचार एक सिमर नाम आद हर अवरिहु पाव सावमीद विसारु चरण कमल जद मेहर तारु करण कारण सुप्रभ सिमराथ दृढ़ कर गह नाम हरवाथ एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एकाह राख मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन कहो चार कुंड उठतावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख कौ नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा कहो करहे पली करनी सा शोभा परिहर की सरनी अन की पावी रोग न जाय रोग मिटै हर खदलाय सर्वनिधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर के नाय दह दिस धावत आठा दह दिस धावत आठाए ताक बिघन लागे कोय जा हृदय बसे हर सोए कालता तीठा डा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिनसे पूर्ण होया से भगत पाया तुम प्रगा तित कर जाए बसे मनासी कहु नानक काटी जा फांसी तत विचार कहे जन साचा जन वरे सो काचो काचा वा गवन मिटे प्रभ सेवा त्यांग सरन गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनकी पावी अनकी पावन छूटन हारे सिमरत साध वेद विचारे हर की भक्त करो मन लाए मन बंस नानक फल पाए संग न चालस तेरह तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटांबे अर बन तायन ते कह तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार ते कह कमन छुटकार आस हती रथ

आरोचित चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के केल बिख जाहे आव जप हु अवरा नाम जपाव सुनत कह तरैत गत पाव सार भूत सत हर को नाव सहज सुपाए नानक गुण गाव गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हाउ मैं बिख फैल होहे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियाणम सगली मना साध संग पाव सच धना हर पूंजी संच करहो बेवहारी हां सुख दरगह जयकार सर्वने त्रेको देह कहो नानक जा कह मस्तक लेख एको जाप एको साला हे एक सिमर एको मन आह एक के गुण गाओ अनंत मन धन जाव एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूर रह प्रभ व्यापन विस्तार एक ते पहे करात प्राप्त गए।

परे प्रेम रास रंग विजय चाव साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अंदर ले बिलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव कीमण सपुरी पहि सतगुर ते निर्मल मत लई जन कहो प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काड़ मुक्त जन पहया जन मरण दुख ब्रह्म गया शुनी सरदा सपुरी रव रहया सद संग हजूरी

सोए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सु कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई, गुर ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जेहा जाना आख नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा मिण भाणे के नाहे, करी जेती सिठ उपाई, वेखा विण करमा के मिलै लाई, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चल सब कोए, चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निरगुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई ना सुजाई जे तिस गुण कोए करे, सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोह ना सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद, सुनया जोग जुगतन भेद, सुनया शास्त्र सेमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठ सठ का इशनान, सुनया पढ़ पढ़ पावे मान, सुनया लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया शेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथों वे सगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनै

आजान बाहो शाहान शाहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान वारंकारं कालान काल अनभूत अंग आभा अभंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य आन दंड बाड्य चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्याय चतुर चक्र दान्याय चाचरी छंद न सत्रय न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाहे न चित्रय न मित्र परे है पवित्राय पृथिश अधिशा अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ शिज देसाय के आ बिज बेसाय के आ गंज गरमाय के आ पंच भरमाय के आ बिज लोकाय के आ दुत सोकाय के अवधूत वरनाय के विभूत करनाय के राजंग प्रवाह है धर्मंग तुझा है के आशोक वरनाय के सर्वा अभरनाय के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुपाय के आद आदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रहीमे रे हाका है के पाग ब्याव है के गैबल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण करिंदा के रोजी दहांद है के राजग्रहीम है के करमंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र दिशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के उसन वजू है तमाम रजू है बेसुल सलामे सलीखुद मदामे गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्ता है बिलंदुल मकान है जमीन

अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भाव स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भाव स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समो सिदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुप अतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिवद न्याप सीसना जात विचारे एते पै तो कहा पे भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फराया सब देव दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे पूत पिख भवान के पुपत कौन करे नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजेबिन अंत को अंत के धाम सिदारे तीर्थ नहान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेख वेद पुराण कतेब ग्रान जमीन जमान समान के पेखा पवन आहार जति जतार सब सुचार हजार देख है श्री भगवान भजेबिन पुपत एक रतीबिन एक ना लेखा सुध सिपाह द्वंद बाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले नाह लेंगे तूर अरीर मरोर मवासन माते मतंगर मान मलाएंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलाएंगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की धार बशैया तोर देश मिलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ना हासो बातनी चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक नेक सो एक दवैया दानव देव निंदन साचर भूत

दयानंद शनु बजायो आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोबाद कियो घट घट के अंतर चीटी संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछन घट घट के पट पट की जन जबद कर करा कर तारा को कब हूं तुम मैं मृत देह तार सब हूं जेते बदन सिट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्बेकार निर्लंब याद अनिल अनाद असंभ या

स्वभावा सदा सुहिला सदगुरु सुनाया यो तिनके मन वस्या जंतरों लिख आया एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किन न पाया कहे नानक शब्द सुहिला सदगुरु सुनाया पवित्र से जना जिनी हर त्याया हर त्याय पवित्र गुरमुख जिनी त्याया पवित्र माता पिता गुणम सहत स्यों पवित्र संगत सबाइया कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन मसाया कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहजना ऊप जाहे बिन सहजे सहसा ना जाहे न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मिली न कित संजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर स्यों रह हो चित लाए कहे नानक गुरु प्रसाद ही सहज उपजाए ए सहसा इब जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया ए तृष्णा वड्डा रोग लगा मरन मनो में सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने ना ही फिरे जो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुआ हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे ना ही मनसा सत समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख हो वै होवेता सन्मुख से कोई जीव रहे गुरु नाले गुरु के चन हृदय ते आय अंतरयात्म संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरु बिन अवरना जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जेको गुरते बेमुख हो वै बिन सतगुरु मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर तै कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरमे आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिनको नदर गर्म हो वह हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रह हो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आग बखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी चित जिनका हेर लाया बाया बोलन पैर वाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी मुरका शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया बाओ आपे हीरा रतन आपे सुन दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सख्त आप बाए कहे करता आपे हुक्म रताए आप एक है गुरमुख से बुझाए तोड़ा बंधन होवे मुक्त शब्द मन मसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सिंह निबलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तथा सार ना जानी तथा सार ना जानी पाते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत्पाए सुनंदिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिया मनो क विसारिय एवं दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनु कह पोए ना सकी जे सुनाओ आपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कहे नानक केवड़ दाता सो को मनो विसारी है जैसी अग्न उदर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सबिको जही करता है खेल रचाया जात सभाणा ता जम्या परवार भरा पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजाए पाहु दूजा लाया कहे नानक गुरु प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमल लाए ऐसा सतगुरु जे मिलाए तसनु सिर सौंपिए बिचो आप जाए जिसदा जियो तस मिल रहा

गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक शिष्ट का मूर रचया जोत राखी तातों जग में आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ हर मंगल गाओ ग्रह हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया हर गाओ मंगल सखिए सोग दुख ना व्या पाए गुरु चरण लागे दिन सभागे आपना फिर जा पाए अनंत बाणी गुरु शब्द जानी हर नाम अरस

संग पयोसायर तिन शब्द सुरत की नी बरखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही ना जाई। सोडी

नमस्कारया धन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारया ऐसे दीन दयाल सतगुरु तिना दी पवित्र रसना तो जैतसरी राग विच उचारण कीता होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 696 ते शशोभत है। विचारधीन शब्द दिया रहाव वालियां पंक्तियां दे बचन हन मेरे मन

सब अर्था सब मनोकामनावां पूरियां हो जांदियां हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच इस भाव दे बेअंत बचन हन, पर बड़े सरल ते तुहाडे मूँह चढ़े बचन हन। हजूर फुरमान करदे हन वे जिस तरह की भी अवस्था होवे, समस्या होवे, जे सिमरन करिए ते ओ उस समस्या का समाधान बन के सामने आ जाता। जिंदगी विच कोई मुश्किल बन जाए, कदी कदी मुश्किल बहुत वड्डी भी बन जाती है, समस्या बहुत वड्डी होती है, लोग कह देंदे ने भाई साहब इहदा कोई हल नहीं, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई गुरु के सिखा जे तू अकाल पुरख की ओट लवे ते तेरी वड्डी तो वड्डी जिहड़ी मुश्किल है जां मुश्किलात हन ओ मुश्किलां तेरियां हल हो जाणगियां और तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकेगा। बचन है जा कौ मुश्किल अत बणे। एक मुश्किल हुंदी है, एक अत मुश्किल हुंदी है। बहुत वड्डी मुश्किल बन जाए, बड़ी वड्डी मुसीबत आ जाए, ऐसी मुसीबत आ जाए भी ढोई कोए ना दे, कोई भी नाल ना खड़े, आखण भी भरा साडे कोल ना आवया कर, सानू भी मरवाएगा, इस तरह की भी अवस्था जिंदगी च बन जाती है। लागू होए दुश्मना साक पे भज खड़े। सारे लोग आला दुआला हाथ धो के ही मगर पै जाए, रिश्तेदार भी भज खड़े होण, आम तौर ते इस तरह ही हुंदा। सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै, ए बिद को व्यवहार बनयो है, जां स्यो नेहु लगायो, अंत बार नानक बिन हार जी को काम ना आयो। इसलिए जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खड़े। सबो भजे आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। साहिब नितानिया का तान, आवे न जाई थिर सदा गुर शब्दी, गुरु दे शब्द राई उस सदा थिर नू जान, सदा थिर दा प्यार मान। फिर हजूर कहिंदे ने जे को होवै दुबला, दुबला कहिंदे ने पतले नू, पतले तो सेंस है कोई माली पक्षों कमजोर हो जाए, आर्थिक पक्षों वो कमजोर हो जाए, उदे कोल कोई पैसा टका ना रवे, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, जे को होवै दुबला, दुबला मैंने आर्थिक पक्षों कमजोर हो जाए,

सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा काज सब सुवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा, क्या नाही घर तेरे करता तेरे सब किच है, जिस दे सो पावे सदा सिव सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शाह, सुख मन है वसिया जिन इच्छा।

मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो, सो को टल गुरु सेविए, एहनस सहज सुपाए, दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उरतारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कारज सफल हमारे, हर हर चरण हृदय उरतारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कारज सफल हमारे, रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहर कशना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहर कछ ना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पया, मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर तां पाया, सह सेती मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नारो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कर सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है, जिस देवे सुपावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वाजी शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुर बिट हो, जिस दिया वड़ियाईया, कहे नानक सुनो संतो सब तरुपे आरो, साचा नाम मेरा आधार हो, वाजे पंच शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवास कीते काल कंठ कुमारिया, तुर करम पाया तू जिन को से नाम हर के लागे, कहे नानक तैस गुआ तित कर आनंद वाजे, आनंद सुनो बड़भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार, ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत, साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पनीत कहते पवित, सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: है सोठ महल्ला पंचम। हम मैले तुम उजल कर, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता।
1: हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता।
0: माँ दो हम ऐसे तू है, माँ दो ऐसे तू। हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देश। हम पाप खंड, नीको ठाकर देश। तुम ये साजन बा जियो पेंड दे प्राण। तुम सब साजे साजन बा जियो पेंड दे प्राण। गुण यारे गुण नहीं को, तुम दान दो मेरो। निर्गुण यारे गुण नहीं को, तुम दान दो मेरो। तुम करो भला हम भलो न जा, तुम सदा सुन। तुम करो भला हम भलो न जा, तुम सदा सदा दया। तुम सुखदाई पुरख बिदा, तुम राखो अपने बाल। तुम सुखदाई पुरख बिदा, तुम राखो अपने बाल। तुम निदान अटल सुर जी जन सब जाके। तुम निदान अटल सुर जी जन सब कौ नानक हम हे हवाले राग संतन के पास। कौ नानक हम हे हवाले राग संतन के पास।

चाचरीशम गोविंद मुकंदे उदारे अपार हरि अंकारी नाम में अकाम गोविंदे।

0: डर पर मंगणांदर कभी न छोड़, मन रत्ता गोविंद संग सज भोजन जोड़, मन रत्ता गोविंद संग सज भोजन जोड़, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती को, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती को, राज मिल खुशियां कण क्या मुख न मोड़, राज मिल खुशियां कण क्या मुख न मोड़, ढाडी दर पर मंगणा दर कदे न छोड़, ढाडी दर पर मंगणा दर कदे न छोड़, नानक मन तन चाओ ए नित प्रभु को लो, नानक मन तन चाओ ए प्रभु को लो, तन तन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर रूप भगवान नानक की प्रभे अपनी भक्ति ला, मांगो दान ठाकर धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव, तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर रूप भगवान नानक की प्रभे अपनी भगती ला, मांगो दान ठाकर धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, भुल चुक माफ, तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धनबाद, नानक नाम चढ़ती कर तेरे पाने स्वतः, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बहुत बहुत
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, देवत्यां दर्शन कै ताई दुख भूख तीरथ किए, जोगी जति जुगत मह रहते कर कर भगवे भेस पए, तव कारण साहेबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते, दर घर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए, पीर पैकंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए, साध सहज सुख रास कास तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंददार, तेरे नाम रते तेरे नाम रते दरवेश पए, खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत

जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम।

हे राम नानक प्रभु शरणागति जब अनंत तरंगे राम एक तिल प्रभु न बिसरे जन सब कुछ दीना राम बड़ भागी हिमला बड़ा गुरमुख पैर चीना राम बाँ पकड़ तुम ते कड़िया करि अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सकूं प्रभु अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पह पार गुरामी राम गुण गावत गोबिंद के सब इस पजामी राम नानक हुदरे जप हरे सब हुंका स्वामी राम रस पिंडड़िए अपने राम संगे से लिके राम प्रापेखत हिशा पुनिया मिल सज्जन जी के राम अमृत रस हर पाए हम फिकिया बिखिया रस पिके राम नानक जल जले समाए ज्योति ज्योत मिके राम बलाबल की बार महला चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला चौथा हर हर हर उत्तम हर प्रभु गाया हर नाद गुराग सुराग उपदेश गुरु सुन मनिया धर्मास्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उतरे हर हर हर उर लिब लाग सब मन तन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग दिन नानक जीवे देखार एक निम्ह कड़ी मुख लाग महला तीजा बुलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम राग नाद सब सुने जा लगे साई ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवीए तां दरगाह पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चुके मन भगवान पौड़ी तू हर प्रभु आप गम है सब तो दुख पाया तू आप ही आप वरतदा सब जगत सवाया तुद तो आपे ताड़ी लाइए आपे गुण गाया हर त्या भो भगतो दिन सरात अंत लय छुड़ाया जन सेव्या तन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए भलाव ना हो भी मन मुखाए न पाए बखंड भगत ना हो भी पार ब्रह्म पाह ना जाए मन हट कर्म कुमा बने थाए न कोई पाए नानक गुरमुख गप विचारिए बिचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म बसिया मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाए महला तीजा बुलाबल करो तुम प्यारो एक सोल बुलाए जन्म मरन दुख कटिए सच है रह समाए सदा बुलाबल आनंद है जे चले सतगुर पाए सत संगति बह पोह पर पौ कर सदा हर के गुण गाए नानक सहजन सोने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया बिच हर आप सो भगतों का मित हर सब कोई हर के बस भगतों के आनंद कर हर भगतों का मेली सर्वत सो निश्चल जन टंग धर हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तद अपड़ को ना सके सब चक चक पवे चाड़ श्लोक महला तीजा ब्रह्म विदय सो ब्रह्मणा सो चले सतुर पाहे जन के हृदय हर बसे होमे रोग गुबाए गुण रबे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाहे इस जुग में बिरले ब्रह्मण ब्रह्म विदय तिस जित अलाए नानक जन को नदर करें हर सच्चा जे नाम रहे लबलाए महला तीजा सतगुरु सेवना कीतिया सब न लग पाओ होमे रोग कुमा बना अंत तीगर बहु सुभा मन हट कर्म कुमा बने फिर जूनी पाहे गुरमुख जन्म सफल है जिसनु आपे लय मलाए नानक नदर ही नदर करें ता नाम तन पले पाए पौड़ी सब वडियाइया हर नाम बेचें हर गुरमुख ध्याई जे बा

कर्म से तन मिले दसो कर्म ही नाशकाय होर सहित संतर हर तन सोला दी जा गुरम संसमो नहीं चिंता विच जाए जो किसी दूसरे जी कहना कुछ न जाए नानक तिन के आखा जे आसन जे लाए पर निभाए भला दी जा काल मार मन समने सोनी अंतर निर्मल नौन तिन जाके एक दिन सोवे सहजे और प्याऊ मिट्टा बोलिया मत पाणी अंतर हर गुण गाओ निज कमा सा सदा सौ दिन अंग तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर तन रतन जवेरी

करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थापे उथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रवेया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मला जन सोई। खिन मैं थापे उथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रवेया सब लोई।